0: गवर्नमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे,
2: इट्स अ माय वे।

0: हम लोग भी तंग आ गया है, लोग देखना नहीं चाहते हैं। देश विकसित भारत के तरफ बढ़ चुके हैं, देश बदल चुके हैं। अब किसी खानदान में जन्म देने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। देश के युवा बदल चुके हैं, नई सोच के साथ 2047 में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के लिए पूरा चल चुके हैं।
1: ये दिल्ली का जो सबसे संवेदनशील इलाका बैठा हुआ है, वहां राहुल गांधी बैठकर एनआरकी कर रहे हैं। आपने अपनी बात कही, मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी और उनके अध्यक्ष और बाकी ने कहा है कि बैलेट पेपर शुरू किया जाए, मतलब ईमानदार टेक्नोलॉजी चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए बूथ कैप्चरिंग करके जीतना चाहते हैं।

0: एप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
2: इट्स अ माय वे।

कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपी को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है।

0: open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीएफ देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
4: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
1: इट्स माई वे।
5: हाउ मेनी ऑफ अस have witnessed a man flashing us?
6: All of us. It's
5: how many of us have witnessed a man making obscene gestures at us?
6: All of us.
5: How many of us here have been felt up in a public space?
6: All of us.
5: How many of us have borderline been sexually assaulted? That's 100% count. How many of us usually never speak about it?

0: confuse a bit of a wind getting trapped or a bit of a gastric thing to discomfort? Like, how do I know this is a heart related issue or this is a gut related issue?
1: Very important. And in fact, both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks, and people are damaging their heart thinking कि वो गैस थी और शायद वो राजमा खा लिए थे रात को या मैं बाहर खाने चले गए थे और पूरी रात वो गैस को समझते रहे, डाइजीन खाते रहे. बाय द टाइम दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल द हार्ट इज बैडली डैमेज्ड बिकॉज 8 to 10 hours हैव पास्ड बाय. दिस इज द वेरी राइट पॉइंट यू आस्क. मैं तो डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं चाहता बिकॉज द कॉमनेस्ट सिम्टम इज अ प्रेशर ऑन द चेस्ट विच गोज डाउन द आर्म व्हेन यू एक्सरसाइज. इट कैन गो अप ऑल्सो द नेक. And it goes away when you sit down or stop in the next 5 minutes.
0: Okay.
1: But some people will get actually a gastritis. Jalan si ho rahi hai. Gas si lagti hai mereko chalne mein. But main ruk jata hoon aur do digestion kha leta hoon to theek ho jati. Don't. Anything which is coming on exercise, including breathlessness, including pain even in the back on exercise, pain in the jaw on exercise and brisk walking should not be ignored because exercise related any form of discomfort including gas is likely to be heart problem. Ye jo gas wali feeling hai na, that also constitutes at least 20% to 15 to 20% heart attack. So ye bhi ek bahut important message hai ki agar wo gas unusual hai to a person जिसको कभी ये एसिडिटी होती नहीं थी या आपने एक डाइजीन की टैबलेट ली और 15-20 मिनट में एक आधे घंटे में रिलीफ नहीं मिली, प्लीज गो टू द हॉस्पिटल. एक ECG जरूर करा लें. अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस ना करते रहें बिकॉज ECG से ही हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाता है. हार्ट अटैक से बचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट डैमेज हो गया तो हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है. सो डोंट टेक दीज डिसीजन योरसेल्फ.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
1: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे,
2: इट्स माय वे।

0: हम लोग भी तंग आ गया है, लोग देखना नहीं चाहते हैं। देश विकसित भारत के तरफ बढ़ चुके हैं, देश बदल चुके हैं। अब किसी खानदान में जन्म देने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। देश के युवा बदल चुके हैं, नई सोच के साथ 2047 में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के लिए पूरा चल चुके हैं।
1: ये दिल्ली का जो सबसे संवेदनशील इलाका बैठा हुआ है, वहां राहुल गांधी बैठकर एनआरकी कर रहे हैं। आपने अपनी बात कही, मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी और उनके अध्यक्ष और बाकी ने कहा है कि बैलेट पेपर शुरू किया जाए, मतलब ईमानदार टेक्नोलॉजी चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए बूथ कैप्चरिंग करके जीतना चाहते हैं।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपीज को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
1: अगर आपके दिल में समाज के लिए देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा।
0: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
2: मैं आपका मालिक नहीं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जवाब देने आया हूं।
3: विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत।
4: एक महीने के भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों का बैंक का खाता खोलने का काम पूरा कर दिया।
5: अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें।
6: अहोमार विकास यात्रा यही।

इतना संकल्प जिन्होंने जनसेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया, जिनके लिए जनसेवा ही राष्ट्र सेवा का मार्ग बनी और जीवन के इसी संकल्प को लेकर राजनीति में केवल सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, ऐसे हमारे हम सब के अपने हमारे प्रधानमंत्री और इस देश के प्रधान सेवक को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। मैं सर्वप्रथम उनके सार्वजनिक जीवन के साथ साथ उनके इस 25 वर्ष की सेवा और समर्पण की इस यात्रा को, जो अनवरत है, अविचल है, अथक यात्रा के लिए 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज देश के सभी जिले से लोग आपके इस यात्रा के साक्षी बन रहे हैं और मैं कह सकता हूं भारत की 140 करोड़ जनता आज अपने प्रिय नेता को आशीर्वाद भी दे रही है और प्रिय नेता को लगातार शुभकामना दे रही है यशस्वी होने की, कि वो विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। आपने इन 25 वर्षों में दीपक की तरह स्वयं को जलाकर अपने परिश्रम और समर्पण से 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में विकास, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का उजाला फैलाने का निरंतर प्रयास किया है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आपके दीर्घ यशस्वी सार्वजनिक जीवन के लिए आपको शुभकामना देता हूं। साथियों, देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी ने अपने किताब में 2014 के चुनाव को टेक्टोनिक शिफ्ट के रूप में कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति का यह बड़ा बदलाव है और उनके अनुसार जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके जनता के सामने एक घोषित उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया और बाद में जनता का अपार जन समर्थन मिला और वो देश के पहले चुने हुए घोषित प्रधानमंत्री के रूप में आए, यानी इसके पहले कई चुनाव हुए, चाहे वो जनता ने किसी पार्टी को समर्थन दिया हो या गठबंधन को वोट दिया हो, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का नाम तय होता था। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा केवल पार्टी का चेहरा नहीं था, केवल भारतीय पार्टी के द्वारा उन्हें नामित नहीं किया गया था, बल्कि वो सीधे जनता के सामने चुनाव कर प्रमुख चेहरे के रूप में पेश किया गया और देश की जनता ने पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें जनता ने सीधे जनादेश देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, आज़ादी के बाद किसी चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पहले उनको कांग्रेस के नेताओं ने चुना। इंदिरा गांधी जी की बात अगर हम करें तो उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पहली बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो उन्होंने भी अपने माता के दिवंगत होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बने और बाद में जनादेश लेके आए। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी राजनीतिक परिवार के नहीं, किसी विरासत के साथ नहीं, उन्होंने केवल सार्वजनिक जीवन, संगठनात्मक अनुभव और जनता के जनादेश के आधार पर देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। साथियों, पिछले समय में विश्व पटल पर वैश्विक अस्थिरता का दौर रहा है। कोविड के बाद के कालखंड को अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में एंटी इनकम्बेंसी का दौर रहा, ग्लोबल डेमोक्रेटिक क्राइसिस का दौर रहा। इस कालखंड में भी यदि कोई नेतृत्व दृढ़, अडिग और अटल रहा तो वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व रहा। मित्रों, आपके इस नेतृत्व की विशेषता है कि बड़े वैश्विक संकटों का सामना करते हुए भी आपने समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की और उसको अपनी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखा। आज का दिन मैं उन माताओं बहनों के तरफ से आपका अभिवादन करता हूं जिनके लिए आपने शौचालय निर्माण से लेकर उज्ज्वला की योजना लाई,

0: जिनके लिए आपने सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में इन योजनाओं को लाया। मैं आज उन बहनों के तरफ से भी आपका अभिनंदन करता हूं, जो 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी बहनें हैं, जिनको आत्मनिर्भर बनाकर आपने महिला सशक्तिकरण के लिए नई मिसाल कायम की है। आपने केवल वुमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की है। और अब 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति भागीदारी को भी आपके नेतृत्व में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैं आज देश के 11 करोड़ से ऊपर उन किसान भाइयों के साथ साथ उन सभी किसान भाइयों के तरफ से आपको अभिनंदन करता हूं, जिनके लिए आपने किसान श्री सम्मान योजना लाई। आपने कृषि को एक विभाग नहीं माना, आपने कृषि विभाग को कृषि विभाग के साथ साथ किसान कल्याण विभाग के रूप में परिवर्तित कर किसानों के प्रति देश की नेतृत्व का क्या सोच है उसको आपने प्रदर्शित किया। मैं आज उन खिलाड़ियों के तरफ से भी आपका अभिवादन करता हूं, जिन खिलाड़ियों ने को आपने खेलो इंडिया के माध्यम से नए अवसर दिए, और आज हमारे खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। मैं आज उन परिवारों के तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूं, जिनका अपना आसियाना नहीं था, जिनके अपने छत नहीं थे, उन 4 करोड़ गरीब परिवारों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर उनके घर पर छत, उनके सपनों का घर देने का काम आपने किया है। कोरोना जैसी आपदा में जब पूरा विश्व ठहरता गया था, आपने करोड़ों भारतवासियों के बेटा और भाई बनकर उनके लिए निःशुल्क वैक्सीन से लेकर 80 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना लाई, जिससे हमारा पूरा देश उस अस्थिरता और उस आपदा की घड़ी से बाहर निकल पाया। मैं आज देश के युवाओं के तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश 2013-14 में देश में युवाओं में निराशा और नाउम्मीदी के पूरा माहौल बना हुआ था, उनके अंदर आपने आशा और उम्मीद की नई किरणें जगाई, और यही कारण है कि आज देश के अंदर 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप, से अधिक 125 से अधिक यूनिकॉर्न का साक्षी है कि आज का युवा आपके नेतृत्व में केवल जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनकर उभर रहा है और इस देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। आपने इस देश को आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की कल्पना देकर हम सभी भारतवासियों को भारत को 21वीं सदी का नेतृत्व करने वाला देश बनाने की दिशा में आपने प्रेरित किया है। मैं आज के दिन उस कल्पना को भी अभिनंदन करता हूँ, जिसने नई सोच और नई दिशा दी। इस देश में विभाजनकारी राजनीति का एक बड़ा दौर देखा है, पर आपने इस देश को ज्ञान की नई सूत्र दिया। आपने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को केंद्र में रखकर सरकार की योजनाओं को बनाने का काम किया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज के दिन मैं जनसंघ कालखंड से लेकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं कि हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को और सदैव अटल जी की सुशासन की व्यवस्था को आपने पूरी पारदर्शिता के साथ देश के अंतिम व्यक्ति के विकास की योजनाओं में आपने जोड़ा है। चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम हो, चाहे 370 के समाप्ति का विषय हो, हम कह सकते हैं कि आपने देश को वो सम्मान दिलाया है, वो एकता का भाव दिया है, जिससे आज पूरा देश 140 करोड़ देशवासी एक साथ चलकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने केवल विकास ही नहीं दिया, आपने हमें मौका दिया विरासत पे गर्व करने का, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर हो, हम सोमनाथ के इस पवित्र मंदिर को याद करते हैं। मैं आज कह सकता हूँ कि आपने केवल इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, हमारे आस्था के केंद्र को आपने फिर से सृजित किया है। सेवा तीर्थ के माध्यम से, अमर शहीदों के सैनिकों को समर्पित नेशनल वार मेमोरियल के माध्यम से, और हम कह सकते हैं हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के माध्यम से आपने पूरे देश के विरासत को गर्व करने का हम सभी को मौका दिया है। मैं आज उन परिवारों के तरफ से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आयुष्मान भारत से आपने 60 करोड़ परिवारों को जोड़ा है, वो परिवार आज स्वास्थ्य के बीमा के साथ जो लाभ ले रहे हैं, उसका आशीर्वाद समस्त देशवासी आपको देते हैं। मैं आज के दिन उन वीर सैनिकों के तरफ से भी आपको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके साथ आपने केवल दिवाली और होली नहीं बनाई, आपने उनके मनोबल को ऊंचा करने का काम किया, उनके सीने को चौड़ा करने का काम किया है। आज के समय एक समय था जब इस देश में सैनिकों के सर काट लिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी, पर आज आपने स्पष्ट संदेश दिया है, ये नया भारत है, ये अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रति दृढ़ता से खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, और हमारी सेना हमारी शान है। आपने इस बात को प्रदर्शित किया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार से आपने नेतृत्व दिया है, 35 देशों से अधिक आप लोगों देशों ने आपको अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। हम कह सकते हैं कि यह सम्मान केवल आपका नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का है। ये भारत के महत्व का, भारत के प्रभुत्व के बढ़ते हुए का प्रतीक है। मैं आज के दिन समस्त भारतवासियों के को जो गर्व करने का आपने मौका दिया है, मैं उसके तरफ से भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आज आपके नेतृत्व में देश को नई सोच, नई दिशा मिली है। हमारी संस्कृति और विरासत, ऐसे कई आयाम आपने दिए हैं जो हम सबको गर्व कराता है। चाहे योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का विषय हो, भारतीय संस्कृति के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, और हम कह सकते हैं इस देश के लोगों को नई सोच आपने दी है। सीमाओं पर पड़ने वाले गांव, जिनको अंतिम गांव की संज्ञा दी जाती थी, आपने उसको परिवर्तन कर नई सोच दी है। आपने कहा है कि वो भारत का प्रथम गांव है और भारत के लोगों के सुरक्षा और स्वाभिमान का पहला गाँव है। मैं आज आपके दिन आपके इस सोच को नमन करता हूँ। जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है, तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपने देश की शक्ति को, देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी, 25 वर्षों की आपकी इस यात्रा को संघर्ष से संकल्प तक, संकल्प से सिद्धि तक और जन सेवा से राष्ट्र सेवा की इस यात्रा को नमन करता हूँ। साथ ही साथ मैं आज आपके माध्यम से देश के लोगों को जो संकल्प विकसित भारत का मिलने वाला है, उस संकल्प के साथ भारत अब निरंतर आगे बढ़ेगा और अपने विकास के साथ साथ अपने विरासत को आगे बढ़ाएगा। 21वीं सदी का भारत निश्चित रूप से विश्व की अगुवाई करेगा और उसका नेतृत्वकर्ता आप होंगे प्रधानमंत्री जी। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ आज देश भर के समस्त जिलों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग जुड़े हैं। मैं आज उनके तरफ से आपका अभिवादन करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि आइए प्रधानमंत्री जी, आपके माध्यम से देश के लोगों को ऊर्जा मिलने वाली है, देश के लोगों को जो दिशा मिलेगी उससे हम विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। मैं आग्रह करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से, मैं समस्त लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी को भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम।
1: BJP President Nitin Naveen congratulating Prime Minister Modi.
2: Bharat Mata Ki, Vande, Vande, Manch par virajman Bharatiya Janata Party ke राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक माननीय नितिन नवीन जी, देश के कोने कोने में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, सेवा ज्योति यात्रा के सभी यात्री, करोड़ों करोड़ों देशवासी, देवी और सज्जनों, मैं आप सभी का, सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। अक्टूबर 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं।

ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सभी राजनीतिक साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश की जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। इस दौरान इतने सारे चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभाओं में चुनाव हुए हो या लोकसभा के चुनाव, जनता ने हमेशा मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मैं आज भारत के लोकतंत्र का, भारत के संविधान का भी वंदन करता हूं। मैं सेवा ज्योत यात्रा में हिस्सा लेने वाले सभी नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज प्रातः मैं श्री विनायक मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मैंने परमात्मा के सामने देश के लिए प्रार्थना की। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की और अपने लिए भी प्रार्थना की। प्रार्थना ये कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। देशवासियों की और अधिक सेवा कर सकूं, दिन रात सेवा कर सकूं। आज मैं जो कुछ हूं, जहां भी हूं, जिस दायित्व पर हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का ही है। मेरे लिए जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप है। लाखों करोड़ों देशवासियों का विश्वास और लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति रही है। देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास, ये 25 वर्षों का अनुभव
बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है। साथियों, मुझे याद है जब मैं वड़नगर के स्कूल में पढ़ने जाता था तो हमारे मास्टर जी तरह तरह से अलग अलग पाठ पढ़ाते थे और क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाले स्टूडेंट्स में हमेशा मेरा नाम होता था। सीखने की वो ललक, सीखने की वो ललक मेरे जीवन का हिस्सा बन गई और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। मैं जितना सीखूंगा देश के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा। साथियों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।

साथियों, आज मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में कोई घटना व्यर्थ नहीं गई। हर घटना ने मुझे सिखाया, मोरबी की बाढ़ ने मुझे दिन रात सेवा कार्यों में जुटने का रास्ता सिखाया मुझे सेवा करने का भाव। भूज के भूकंप ने मुझे पुनर्निर्माण के लिए डटे रहना सिखाया। चंद्रयान ने मुझे असफलता से उठना सिखाया। कोरोना महामारी ने मुझे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का महत्व समझाया। मीडिया ने मुझे खट्टे मीठे अनुभवों के बीच आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जीवन के हर प्रवास ने मुझे नीतियों में संवेदना का रास्ता दिखाया। हर गांव, हर गरीब ने मुझे सिखाया कि साधन संसाधन भले ही सीमित हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। और हौसले बुलंद होने चाहिए। साथियों, वेद से विवेकानंद तक जिस राष्ट्र ने महान विचारों का अनवरत अनुष्ठान किया है, जिस राष्ट्र का सांस्कृतिक अनुभव हजारों वर्षों का है, जिस राष्ट्र ने मनुष्य को मानवता का भरोसा दिलाया है, उस राष्ट्र की सेवा करते हुए मुझे कभी भी एकाकी महसूस नहीं हुआ। कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। कोटि कोटि स्वयंसेवक जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी है, जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है मां भारती की निस्वार्थ सेवा, जो उस मंत्र को लेकर जीते हैं, हर पल कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, ऐसे कोटि कोटि स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का भी मुझे भरपूर साथ मिला है। मैं आज अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर प्रत्येक स्वयंसेवक को, प्रत्येक साथी कार्यकर्ता को भी
आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी, भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। विकसित भारत बाय 2047, मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है।

सज्जनों, जिस राष्ट्र के लोगों की धमनियों में ऐसा आत्मविश्वास लहू बनकर दौड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की ये निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं, मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है और न ही ये इसका अवसर है। आज से 25 साल पहले 50 वर्ष की आयु में जंगलों में आदिवासियों की सेवा करते करते गुजरा, पहाड़ों में जिंदगी बिताई और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राह चुनी। मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे, लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारियां मिली, मैं उन्हें निभाता चला गया। जीवन का एक ही ध्येय था, देश के लिए निस्वार्थ कर्म। मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही मेरा धर्म है। गीता ने हमें सिखाया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार मेरे कर्म पर है। इसलिए मैं कर्म को अपना कर्तव्य मानता हूं। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, और हर कर्म पूरी क्षमता से करता रहूं। योगः कर्मसु कौशलम, गीता ने ये भी कहा है, तस्मात् असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर, निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रुकना नहीं चाहिए, प्रयास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे लिए
कर्म सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह देश के प्रति, ये देश के प्रति मेरी साधना है। कर्म देश के लिए, कर्म देशवासियों के लिए, और इसमें भाव यही है, मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं, श्रेय की भी चिंता नहीं। देश ने अवसर दिया, लोगों ने विश्वास दिया, परिस्थितियों ने सीख दी, जिसकी वजह से मुझे देशवासियों की अविरल सेवा का अवसर मिल रहा है।

देवी और सज्जनों, पद प्रतिष्ठा अधिकार, जब बात देश की होती है तो इन सब का कोई महत्व नहीं रहता। हमने इस अनादि राष्ट्र में जन्म लिया है, ये एहसास ही अमृत है। इसके सामने सत्ता सुख कुछ भी नहीं है। पद प्रतिष्ठा तो दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, लेकिन भारत जैसी पुण्य भूमि नहीं मिलेगी। वो भारत जिसने अंधकार के युग में भी मानवता को ज्ञान दिया, मूल्यों का प्रकाश दिया, उस राष्ट्र की सेवा का अवसर मिलना ही अमूल्य है। इन 25 वर्षों का आकलन करना है तो इससे नहीं होगा कि मैं कहां पहुंचा, बल्कि असली मूल्यांकन इससे होगा कि मेरा देश कहां पहुंचा है। साथियों, जब मैं गुजरात में था तो एक मंत्र के साथ जीता था, और वो मंत्र था, गुजरात के विकास से देश का विकास। लेकिन वो दौर चुनौतियों से भरा था। तब मेरे पास न तो सरकार चलाने का अनुभव था और न ही प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत ज्ञान था। मेरे पास तब कुछ था तो वो था जनता पर विश्वास। जन शक्ति पर यह भरोसा, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरे वर्षों के काम का निचोड़ था। इसी विश्वास को मैंने अपना सामर्थ्य बनाया। मैंने निर्णय लिए जनता को साथ लेकर, नीतियां बनाई जनता को साथ लेकर, नीतियों को लागू किया जनता को साथ लेकर, और वही मंत्र मैंने कहा, वी विल डू इट, वी विल। और साथियों, जब जनता साथ हो तो परिणाम भी आते हैं। गुजरात ने करके दिखाया। आज गुजरात जहां पहुंचा है उसका उदाहरण दुनिया देती है। साथियों, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव मिला उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जमीन पर समस्या क्या है, समाधान क्यों नहीं हो पाता, फाइल क्यों अटकती है, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे सुनिश्चित होती है, ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर मैंने खोजा। और फिर मैंने जो सीखा वो अनुभव आज तक काम आ रहा है। साथियों,
वर्ष 2014 में देश ने मेरे दायित्व का विस्तार किया। प्रधान सेवक के रूप में सेवा का दायरा बढ़ा दिया और तब भी देश के सामने विकराल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। देश का हर नागरिक नया रास्ता खोज रहा था। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी, इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी। घोर निराशा में डूबे देश को फिर एक नए विश्वास की जरूरत थी। साथियों, मैंने फिर वही काम किया जो मुझे आता था। कोटि कोटि भारतीयों की जनशक्ति का आह्वान किया, उनके सामने फिर दोहराया, वी विल डू इट। और आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती थी। आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। साथियों, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं। साथियों, बदलाव की इसी कहानी का एक और उदाहरण, शानदार उदाहरण खेती भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक खेती की विकास दर अगर किसी दशक में निरंतर सबसे अधिक रही, आजादी के इतने दशक बीत गए, अभी का जो दशक है, बीता 10 वर्ष है, वो सबसे अधिक रहा है। साल 2015 से 2025 तक का दशक, 2015 से 2025 तक का दशक इसने खेती की ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खेती के लिए जाने वाले बड़े देशों में भी इतनी तेज ग्रोथ नहीं रही है। ये तभी होता है जब नीयत साफ होती है और नीति स्पष्ट होती है।

साथियों, सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। हमारे देश की एक बड़ी त्रासदी रही है, राजनीति के लिए समाज को वोटों के हिसाब से बांट दिया गया। आप सोचिए, खेत में पानी नहीं आता तो किसको नुकसान होता है? क्या एक जाति के किसान ही इससे प्रभावित होते हैं? बिजली नहीं आती तो क्या सिर्फ एक समुदाय के घर में अंधेरा रहता है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके। यही सैचुरेशन है, यही बदलाव की असली गाथा है। साथियों, हमने इस देश पर जन्म लिया, मां भारती की गोद में पलने बढ़ने का सौभाग्य हमें मिला। ये हमारे ऊपर मां भारती का ऋण है, इस देश की पावन पुनित माटी का ऋण है। क्या हर भारतीय का यह संकल्प नहीं होना चाहिए कि वो कर्तव्य की पराकाष्ठा से कुछ कर्ज उतारे? हमारे दिल की हर धड़कन में क्या एक ही संकल्प नहीं गूंजना चाहिए? हमें भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना है। भाइयों बहनों, जो भारत कभी विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता था, जिसके किस्से सुनकर दुनिया समृद्धि की कल्पना करती थी, लेकिन समय का चक्र बदला, गुलामी का कालखंड आया, आक्रांताओं और लुटेरों ने उसी भारत को लूटकर तबाह कर दिया। जो भारत दुनिया को दिशा दिखाता था, उसके विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए, उसके पुस्तकालय जला दिए गए। एक ऐसा भी समय आया, छोटे छोटे संकट भी विकराल होने लगे। भयावह भुखमरी, विदेशियों के हमले, संस्कृति सम्मान और स्वाभिमान पर कृत प्रहार, ऊपर से ऐसी गरीबी और विभीषिकाएं, लेकिन तब भी मां भारती की संतानों का साहस नहीं टूटा। हर बार बार बार कोई दिग्दर्शक जन्म लेता रहा, सामान्य मानवी में नई सुबह का आत्मविश्वास जगाता रहा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी की वाणी है, एक दिन एक अद्भुत गौरवशाली और महान भारत का उदय होगा। विवेकानंद जी कह के गए हैं। महर्षि अरबिंदो ने भी कहा था,
महर्षि अरविंदो ने कहा था, भारत के भाग्य का सुरूर, भारत के भाग्य का सूरज जरूर उगेगा और उसकी रोशनी पूरे विश्व को आलोकित करेगी, श्री अरबिंदो ने कहा था। साथियों, अदम्य साहस और अमिट जिजीविषा में तपे हमारे वो पूर्वज, हम उन्हीं की संतान है, उन्हीं के तप, त्याग और बलिदानों का परिणाम है। आज हमारे पास एक ऐसा देश है जहां हमारे सपने स्वतंत्र है और उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य भी हमारे पास है। आज हम खुद ही अपनी नियति के नियंता है, इसलिए आज ये मां भारती के साथ अन्याय होगा अगर हम छोटे लक्ष्यों को लेकर चलेंगे। ये राष्ट्र के सामर्थ्य के साथ अन्याय होगा अगर हम आसान लक्ष्यों को लेकर चलेंगे। ये समय है जब हम एक देश के रूप में बड़े लक्ष्य रखें, ऐसे लक्ष्य जो अभूतपूर्व हो, ऐसे लक्ष्य जो असाधारण हो। विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। साथियों, हमें ऐसा भारत बनाना है कि टूरिज्म की बात हो तो दुनिया भारत का नाम ले, पढ़ाई की बात हो तो दुनिया भारत को चुने, मनोरंजन का डेस्टिनेशन हो वो भारत हो, हेल्थ एंड वेलनेस की प्राथमिकता भारत ही बने, स्पोर्ट्स का सिरमौर भारत हो, इनोवेशन का हब भारत हो, टेक्नोलॉजी में भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए। साथियों, आज पूरे विश्व में भारत के पायलट की चर्चा है। एक दिन वो भी आएगा, आज पायलट की चर्चा है, एक दिन वो भी आएगा जब दुनिया मेड इन इंडिया प्लेन की चर्चा करेगी। साथियों, ये लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब वर्तमान में हम दूरदर्शी नीतियां भी बनाएं और परिश्रम की पराकाष्ठा भी करें। हमारे देश में समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास 140 करोड़ समाधान भी है। अब यह समय आराम का नहीं है, यह समय जोश के साथ आगे बढ़ने का है।

आज भारत में जितने युवा हैं वो इतिहास से मिला एक बहुत बड़ा मौका है। ये मौका हमें गंवाना नहीं है। मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा, आपके दादा दादी, नाना नानी, उस पीढ़ी के लोगों ने जो कष्ट झेले वो आपको झेलने न पड़े, आपकी संतानों के भाग्य में वो कष्ट न हो, इसके लिए हमें आज ही काम करना होगा और मैं वही कर रहा हूं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं ये विकसित भारत का लक्ष्य तो बहुत दूर का लक्ष्य है, लेकिन मैं हर देशवासी को कहूंगा, आप आज से ठीक जरा इतिहास की तरफ नजर कर लीजिए। आज से ठीक 100 साल पहले के भारत को याद कीजिए। 20वीं सदी का वो तीसरा दशक, 1920-30 का कालखंड, हजार साल की गुलामी का असर और आघात, टूटा हुआ मनोबल, गरीबी में जकड़ा भारत, समाज को बांटने के षड्यंत्रों से घिरा भारत, ऐसे में आजादी का भरोसा करना कितना मुश्किल रहा होगा। 100 साल पहले की कल्पना कीजिए, लोग लड़ तो रहे थे, अपने बलिदान भी दे रहे थे, लेकिन भारत फिर से उठ खड़ा होगा, इसकी कल्पना भी कितनी कठिन रही होगी। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जो असंभव लगता था वो हुआ। करीब 20 साल बाद ही, मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूं, 1925-30 की बात कर रहा हूं, 20 साल के भीतर भीतर देश ने अंग्रेजों को खदेड़ कर दिखा दिया था। गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर भारत आजाद हुआ, और इसलिए मेरा विश्वास है आज 2026 में हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो जरूर पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। कोई कारण ही नहीं है कि भारत अब रुके। और साथियों, तब तो 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब तो हम 40 करोड़ से भी कम थे, आज हम 140 करोड़ से भी ज्यादा है। 140 करोड़ देशवासी हम मिलकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। वी विल डू इट। साथियों, मेरा ये विश्वास देश की सिद्धियों से मजबूत हुआ है। यही भारत है जिन्होंने फ्रजाइल 5 इकोनॉमी को टॉप 5 में बनाया। हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में करीब 60 वर्ष लगे, लेकिन जब सही नीतियां मिली, सही दिशा मिली, तो उसी भारत ने 12 वर्षों में ही $2 ट्रिलियन से अधिक ग्रोथ करके दिखा दी। आप कोरोना का वो दौर याद कीजिए, दुनिया कहती थी कि भारत का क्या यही कर लेगा क्या, भारत तो जैसे मौत के ढेर पर बैठा है ऐसा माना जाता था, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने दुनिया को गलत सिद्ध किया। भारत ने खुद को भी बचाया और दुनिया के 100 से अधिक देशों में भी लाखों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाई, और इसलिए हमें भारत के सामर्थ्य को कभी भी कम नहीं आंकना है। साथियों, मुझे पेरिस में हुई COP21

0: बैठक याद है, भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने संकल्पों को दुनिया के सामने रखा। तब भी भारत पर अविश्वास करने वाले बहुत थे, लेकिन भारत ने तय समय से पहले ही वो लक्ष्य हासिल किए। ऐसा करने वाला भारत G20 का इकलौता देश है। साथियों, आज विकसित भारत का हमारा सपना भी है, हमारा संकल्प भी है, और उसे पूरा करने का हमारे पास सामर्थ्य भी है। आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है और देश इसके दुष्प्रभावों से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। साथियों, आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था। देशवासी मान चुके थे कि न तो ये आतंकवादी मानेंगे और न ही उनके आका मानेंगे, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा। घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। साथियों, एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, यह भी किसने सोचा था, लेकिन भारत ने यह करके दिखाया है। यानी जिसको कल्पना से परे समझा जाता था, वो सिद्धियां भारत ने हासिल की है। इसलिए मुझे 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और 25 साल का मेरा अनुभव कहता है कि हम अपनी आंखों के सामने भारत को विकसित होते देखेंगे। साथियों, आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2047 में हमें कहां पहुंचना है, हमें आज ये तय करना है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी से क्या करना है। और इसलिए आज देश हर वो कदम उठा रहा है जो विकसित भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है। भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स के मैदान तक छाए रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत की दुनिया में पहचान बने। किसी हिंदुस्तानी के पैर चंद्रमा पर पड़े। भारत जेनेटिक्स जैसी फील्ड में लीडर बने। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे आगे खड़ा हो। हम AI की फील्ड में ग्लोबल हब बने। हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग में गिनी जाए। मेड इन इंडिया उत्पादों का गौरव, दुनिया भारत का सामान खरीदने के लिए लालायित हो। दुनिया की डाइनिंग टेबल पर हमारे किसानों के उत्पाद हो। जब क्लाइमेट चेंज की बात हो, जब वाटर गवर्नेंस की बात हो, गरीबों को एम्पावर करने की बात हो, तो दुनिया भारत के सॉल्यूशंस को अपनाए। आने वाले वर्षों में हमारी सामूहिक ऊर्जा, हमारी सामूहिक फोकस इसी दिशा में होना चाहिए। साथियों, भारत 140 करोड़ सपनों का भारत है। भारत असीमित ऊर्जा का अनगिनत इन आकांक्षाओं का राष्ट्र है। सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, हमें बस हर कदम हर प्रयास को जोड़ना है। हमें एक ध्येय एक मकसद से जुटना है। हमें आजादी मिली क्योंकि हमारे देश के लोगों ने जान दी। अब जब विकसित भारत बनाना है तो हमें देश के लिए जीना होगा। किसके लिए जीना होगा? किसके लिए जीना होगा? किसके लिए जीना होगा? हम बढ़ेंगे तो, हम सीखेंगे तो, हमारे संकल्प होंगे, हमारा परिश्रम होगा, हमारी शक्ति होगी, हमारी भक्ति होगी, हम इनोवेट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, हमारा प्राण होगा, हम जिएंगे। साथियों, जब हम ये भावना लेकर चलेंगे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। हमें आज से शपथ लेकर आगे बढ़ना है कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम मेरा संकल्प होगा, राष्ट्र समृद्धि मेरा प्राण रहेगा, राष्ट्र की सेवा मेरा लक्ष्य रहेगा और नागरिक देवो भव का मंत्र मेरी राष्ट्र आराधना साधना का आधार रहेगा। कर्म मेरा धर्म रहेगा, कर्तव्य पालन मेरा प्रण होएगा। स्वयं से समष्टि तक, स्वयं से व्यम तक मेरे जीवन का कण कण क्षण क्षण भारत भूमि को समर्पित रहेगा। और जब तक भारत विकसित नहीं होता, जब तक भारत विकसित नहीं होता, तब तक मैं न रुकूंगा, न थकूंगा, न अपने पद से डिगूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: We will do it. That's the new war cry and clearly expected to become the big slogan now. Prime Minister Narendra Modi, 25 years in public life. A mass leader that this generation of Indians have seen, who's repeatedly been elected 3 times as a chief minister, 3 times consecutively as a prime minister of this nation. Think about the trust that millions of Indians, in fact, over 1 billion, really, have shown to this man on your screen. And with that, he says, a lot has transformed in the country. A torch being lifted by Prime Minister Modi to symbolize for India, for Bharat, and with a hope that the next few years that Prime Minister Modi is talking about will be even better. The BJP supporters, workers, leaders, in a loud cheer.
0: Modi ji ka
1: Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram, these loud sloganeering from Prime Minister Modi and in turn by the supporters and workers as well. This is an important moment. Remember, ladies and gentlemen, the fact that, yes, while there are some protests going on by the opposition leaders, by the CJP and several other issues that concern our country even now, but Prime Minister Narendra Modi has been able to repeatedly win the trust of 1 billion Indians in hope that he will take the nation, he will take Bharat to bigger heights. A lot has changed definitely in the past few years. And we listened to what Prime Minister Modi said. We'll continue to play the excerpts on your screen. But Prime Minister Modi maintaining that the kind of protest that you're witnessing, which he mentioned as how earlier decisions weren't really taken to protect and safeguard the country and to take it to the next level. But in the past few years, since the Modi government, Prime Minister Modi maintains that the image of the country has transformed, it has developed, whether it's with regard to economy, image building, global relationship, and especially in the times of conflict and war that we have seen in the past 10 years. Through the evening, we'll continue to play out all the latest excerpts from Prime Minister Modi and his speech, and with a hope where Prime Minister Modi lifted the torch that there could be another year, possibly another decade, for PM Modi in power. I'm heading to a very short break. Stay tuned. News and updates continue.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहां पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपी को यहां पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहां बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं।
1: नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
2: अगर आपके दिल में समाज के लिए देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
3: मैं आपका मालिक नहीं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जवाब देने आया हूं।
4: विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत।
5: एक महीने के भीतर भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों का बैंक का खाता खोलने का काम पूरा कर दिया।
6: अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम दौड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीर।
7: हमार विकास यात्रा यही

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।

0: साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा, उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है। दोस्तों, आज का भारत की पहचान है करना है, करना ही है और समय पर करना है।
1: यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती, लेकिन हम भारतीय उन शहीदों के साथ जुट करके विश्व को हमारे इतने बड़े बलिदान का एहसास नहीं करा पाए।
2: खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खेल का महत्व बहुत है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रुचि है तो उनको अवसर देना चाहिए।
3: इक्कीसवीं सदी में दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इतनी बात से चलने वाला नहीं है। 21वीं सदी की आवश्यकताएं अलग है, 21वीं सदी की स्थितियां अलग है। वो एक वक्त था लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आज वक्त है लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये एक बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है।

0: confuse a bit of a wind getting trapped or a bit of a gastric thing to discomfort? Like, how do I know this is a heart-related issue or this is a gut-related issue?
1: Very important. And in fact, both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks, and people are damaging their heart thinking कि वो गैस थी और शायद वो राजमा खा लिए थे रात को या मैं बाहर खाने चले गए थे और पूरी रात वो गैस को समझते रहे, डाइजिन खाते रहे. बाय द टाइम दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल, देयर हार्ट इज बैडली डैमेज्ड बिकॉज़ 8 to 10 आवर्स हैड पास्ड बाय. दिस इज द वेरी राइट पॉइंट यू आस्क. मैं तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं चाहता बिकॉज द कॉमनेस्ट सिम्टम इज अ प्रेशर ऑन द चेस्ट विच गोज डाउन द आर्म व्हेन यू एक्सरसाइज. इट कैन गो अप ऑल्सो द नेक. And it goes away when you sit down or stop in the next 5 minutes.
0: Okay.
1: But some people will get actually a gastritis. Jalan si ho rahi hai. Gas si lagti hai mere ko chalne mein. But main ruk jata hu aur do Digine kha leta hu to theek ho jati. Don't. Anything which is coming on exercise, including breathlessness, including pain even in the back on exercise, pain in the jaw on exercise and brisk walking should not be ignored, because exercise related any form of discomfort including gas is likely to be heart problem. Ye jo gas wali feeling hai na, that also constitutes at least 20% to 15 to 20% heart attack. So ye bhi ek bahut important message hai ki agar wo gas unusual hai to a person जिसको कभी ये एसिडिटी होती नहीं थी, या आपने एक डाइजीन की टैबलेट ली और 15-20 मिनट में एक आधे घंटे में रिलीफ नहीं मिली, प्लीज गो टू द हॉस्पिटल. एक ईसीजी जरूर करा लें. अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस ना करते रहें, बिकॉज ईसीजी से ही हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाता है. हार्ट अटैक से बचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट डैमेज हो गया तो हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है. सो डोंट टेक दीज डिसीजन योरसेल्फ.

0: नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
1: अगर आपके दिल में समाज के लिए देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा।
2: मैं आपका मालिक नहीं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जवाब देने आया हूं।
3: विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत।
4: एक महीने के भीतर भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों का बैंक का खाता खोलने का काम पूरा कर दिया।
5: अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम दौड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें।
6: अहोमार विकास यात्रा यही।

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, चुनाव आयोग से मिलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट इंडी गठबंधन अथवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। यह उनका झूठ नंबर वन। नंबर दो, चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि 4 बजे उन्हें पुलिस के डीसीपी के द्वारा यह पता चला कि नेता प्रतिपक्ष मिलना चाहते हैं, जिस विषय में चुनाव आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया बना रखी है कि कोई भी दल अगर मिलना चाहे वो तत्काल मिलने को तैयार है, मगर वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मिल सकता है।

0: Viewers, as we speak, it's also October 7th. Today marks 25 long years of the Prime Minister serving the public as a part of the government itself. He started his journey with being the Chief Minister of Gujarat, and now he's currently, for 12 long years, the Prime Minister of India. And to mark that very event, there is an entire Viksit Bharat Sankalp Sabha in Delhi and several other such outreach programs that have been underway for some weeks now to mark the Prime Minister's years, 25 long years in governance and in serving the public. We have a special show for you on the same to mark his entirety of the long political journey and public service journey of the Prime Minister. Take a look.
1: सरकार के मुखिया के तौर पर 25 वर्षों की ये निरंतर यात्रा, लोग इसे उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूं? मेरे लिए ये व्यक्तिगत महिमा मंडन का विषय नहीं है और न ही ये इसका अवसर है। आज से 25 साल पहले 50 वर्ष की आयु में जंगलों में आदिवासियों की सेवा करते करते गुजरा, पहाड़ों में जिंदगी बिताई और भारतीय जनता पार्टी में संगठन की राह चुनी। मेरा राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। चुनावी राजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बाल्यकाल से जो मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, वो शिक्षा दीक्षा यही थी कि मैं एम्बिशन के लिए नहीं, मिशन के लिए जीवन जीने वाला इंसान रहा हूं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा सांस दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया। साथियों, आज मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में उसको विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया। साथियों, आज मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में सफलता से उठना सिखाया। कोरोना महामारी ने मुझे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का महत्व समझाया। मीडिया ने मुझे खट्टे मीठे अनुभवों के बीच आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जीवन के हर प्रवास ने मुझे नीतियों में संवेदना का रास्ता दिखाया। हर गांव, हर गरीब ने मुझे सिखाया कि साधन संसाधन भले ही सीमित हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। और हौसले बुलंद होने चाहिए। साथियों, सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। हमारे देश की एक बड़ी त्रासदी रही है, राजनीति के लिए समाज को वोटों के हिसाब से बांट दिया गया। आप सोचिए, खेत में पानी नहीं आता तो किसको नुकसान होता है? क्या एक जाति के किसान ही इससे प्रभावित होते हैं? बिजली नहीं आती तो क्या सिर्फ एक समुदाय के घर में अंधेरा रहता है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए। और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके। साथियों, वर्ष 2014 में देश ने मेरे दायित्व का विस्तार किया। प्रधान सेवक के रूप में सेवा का दायरा बढ़ा दिया और तब भी देश के सामने विकराल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। देश का हर नागरिक नया रास्ता खोज रहा था। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी, इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी। घोर निराशा में डूबे देश को फिर एक नए विश्वास की जरूरत थी। साथियों, मैंने फिर वही काम किया जो मुझे आता था। कोटि कोटि भारतीयों की जनशक्ति का आह्वान किया, उनके सामने फिर दोहराया, उनके सामने फिर दोहराया, वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। और आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती थी। आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती है, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। साथियों, तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं। साथियों, बदलाव की इसी कहानी का एक और उदाहरण, शानदार उदाहरण खेती भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक खेती की विकास दर अगर किसी दशक में निरंतर सबसे अधिक रही, आजादी के इतने दशक बीत गए, अभी का जो दशक है, बीता 10 वर्ष है, वो सबसे अधिक रहा है। साल 2015 से 2025 तक का दशक, 2015 से 2025 तक का दशक इसने खेती की ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खेती के लिए जाने जाने वाले बड़े देशों में भी इतनी तेज ग्रोथ नहीं रही है। ये तभी होता है जब नीयत साफ होती है और नीति स्पष्ट होती है। साथियों, आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है। ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी। भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश, जो जज्बा चाहिए, वो एक ही संदेश देता है, हम करके रहेंगे, हम वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट। विकसित भारत विकसित भारत बाय 2047 वी विल डू इट विकसित भारत बाय 2047 मेरे साथ बोलिए टॉप थ्री इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ओलंपिक्स का आयोजन अंतरिक्ष में कदम साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास, ये 25 वर्षों का अनुभव बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है। साथियों, मुझे याद है जब मैं वड़नगर के स्कूल में पढ़ने जाता था तो हमारे मास्टर जी तरह तरह से अलग अलग पाठ पढ़ाते थे और क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाले स्टूडेंट्स में हमेशा मेरा नाम होता था। सीखने की वो ललक, सीखने की वो ललक मेरे जीवन का हिस्सा बन गई और मैं आज भी स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं और इसलिए आज मंदिर में मैंने मेरे लिए भी एक प्रार्थना की। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरी सीखने की शक्ति कभी कम न हो। साथियों, वेद से विवेकानंद तक जिस राष्ट्र ने महान विचारों का अनवरत अनुष्ठान किया है, जिस राष्ट्र का सांस्कृतिक अनुभव हजारों वर्षों का है, जिस राष्ट्र ने मनुष्य को मानवता का भरोसा दिलाया है, उस राष्ट्र की सेवा करते हुए मुझे कभी भी एकाकी महसूस नहीं हुआ। कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। कोटि कोटि स्वयंसेवक जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रहरी है, जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है मां भारती की निस्वार्थ सेवा, जो उस मंत्र को लेकर जीते हैं, हर पल कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दिन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। ऐसे कोटि कोटि स्वयं सेवकों का, कार्यकर्ताओं का भी मुझे भरपूर साथ मिला है। मैं आज अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर प्रत्येक स्वयं सेवक को, प्रत्येक साथी कार्यकर्ता को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है चुनाव आयोग से मिलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट इंडी गठबंधन अथवा कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। यह उनका झूठ नंबर वन। नंबर दो, चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि 4 बजे उन्हें पुलिस के डीसीपी के द्वारा यह पता चला कि नेता प्रतिपक्ष मिलना चाहते हैं, जिस विषय में चुनाव आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया बना रखी है कि कोई भी दल अगर मिलना चाहे वो तत्काल मिलने को तैयार है, मगर वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मिल सकता है।

0: confuse a bit of a wind getting trapped or a bit of a gastric thing to discomfort? Like, how do I know this is a heart-related issue or this is a gut-related issue?
1: Very important. And in fact, both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks, and people are damaging their heart thinking कि वो गैस थी और शायद वो राजमा खा लिए थे रात को या मैं बाहर खाने चले गए थे और पूरी रात वो गैस को समझते रहे, डाइजीन खाते रहे. बाय द टाइम दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल द हार्ट इज बैडली डैमेज बिकॉज 8 to 10 आवर्स हैव पास्ड बाय. दिस इज द वेरी राइट पॉइंट यू आस्क. मैं तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं चाहता बिकॉज द कॉमनेस्ट सिम्टम इज अ प्रेशर ऑन द चेस्ट विच गोज डाउन द आर्म व्हेन यू एक्सरसाइज. इट कैन गो अप ऑल्सो द नेक. And it goes away when you sit down or stop in the next 5 minutes.
0: Okay.
1: But some people will get actually a gastritis. Jalan si ho rahi hai. Gas si lagti hai mereko chalne mein. But main ruk jata hu aur do diagene kha leta hu to theek ho jati. Don't. Anything which is coming on exercise, including breathlessness, including pain even in the back on exercise, pain in the jaw on exercise and brisk walking, should not be ignored because exercise related any form of discomfort including gas is likely to be heart problem. Ye jo gas wali feeling hai na, that also constitutes at least 20% to 15 to 20% heart attack. So ye bhi ek bahut important message hai ki agar wo gas unusual hai to a person जिसको कभी ये acidity होती नहीं थी, या आपने एक डाइजीन की टैबलेट ली और 15-20 मिनट में एक आधे घंटे में रिलीफ नहीं मिली, प्लीज गो टू द हॉस्पिटल. एक ECG जरूर करा लें. अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस ना करते रहें बिकॉज ECG से ही हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाता है. हार्ट अटैक से बचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट डैमेज हो गया तो हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है. सो डोंट टेक दीज डिसीजन योरसेल्फ.
2: Watching India Today.

0: charged atmosphere. More and more protesters are gathering as we are heading towards the end of the Janpath road. So ultimately, whether it's a sit-in protest that we're looking at or not, that's a little difficult to determine right away. But then it's a matter of minutes now that we'll reach the very barricades. And then high action perhaps is to follow at that very location as
1: Shreya,
0: we speak.
1: Continue to report, update us as and when some development happens. Ground reports being sent in by our colleagues on the ground. Moshmi Singh sends us this walkthrough again. Let's take a look at that.
2: ये तस्वीर किसी रणभूमि की नहीं है, ये तस्वीर है जनपथ रोड की, जहां आप देखिए कि किस तरीके से पूरी तैयारी से रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी ये कतार यहां पे उस बस के इंतजार में है, जिस बस में नेता विपक्ष राहुल गांधी पीछे आ रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला निकल पड़ा है जनपद से जंतर मंतर के लिए, लेकिन इस 801 किलोमीटर के फासले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। आलम इस तरीके से है कि महिला दस्ता भी अपने आप में पूरी तैयारी में बैठा है। देश की राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर है जहां पे इंडिया ब्लॉक के नेता बस में भर के चल पड़े हैं। ये वो वक्त है जब राहुल गांधी इस बस में सवार हैं और ये बस अब जंतर मंतर जा रही है, लेकिन ये फासला पाटने में कई मिनट और घंटे लगते चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत धीमी रफ्तार से ये बस चल रही है। और राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया है कि जंतर मंतर पर जो सांसद है वो धरना देंगे, और इसके साथ ही पूरी एक कहें तो लकीर खींच दी है इंडिया ब्लॉक ने। वहाँ पे आप देखें तो जनपथ एक तरीके से पूरी तरह से जाम है, तमाम बसें तैनात हैं, और ये तस्वीर ग्राउंड जीरो जनपथ से आ रही है।
1: This protest is a developing story. Stay tuned. What is the strategy or in the mind of Priyanka Gandhi Vadra and Rahul Gandhi, Mallikarjun Khadge? How will they step up ante against the government and the election commission? And will they be even allowed to touch base at the EC? We'll be tracking that and more on the news break, heading into a very short commercial break. Stay tuned. News and updates on the other side.

0: हम सिर्फ
1: ज्ञानेश
0: कुमार और बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते हैं।
1: मुंह पे आ रहा है,
0: हम ऑपोजिशन के सारे सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, और हम सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन हमसे बात नहीं करना चाहता। हाँ। यार करोड़ों लोगों ने हमें वोट दिया, तो हम सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, बट वो जवाब नहीं देना चाहते।
2: लोकतंत्र संवाद की गुंजाइश होती है, कि आपको लगता है ब्रेकडाउन हो गया है?
0: नहीं, लोकतंत्र ही खत्म हो गया है
2: सर, जिस तरह से
0: एक सेकंड लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, क्योंकि
3: भैया बोलिए नहीं,
0: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई है। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया, और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।
3: सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने डाला, और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो पहले प्रेस रिलीज जारी की थी,
0: उस पर मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है, देश के ऑपोजिशन के सारे सांसद 300
3: दिल्ली पुलिस
0: 300 सांसद सपोजिटली फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, SIR के बारे में पूछना चाहते हैं, बंगाल के बारे में पूछना चाहते हैं, हरियाणा के बारे में पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते। अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो एक मिनट में वो हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाते। थैंक यू वेरी मच।

0: Welcome back to our special report. 25 years ago, 2001, 7th October, Gujarat gets a new chief minister, Narendra Modi. And at a time when the state was grappling with the Bhuj earthquake, the next three tenures successfully won and people electing him repeatedly, where the Gujarat model of governance was about investment, innovation and ideas. But then he decided to switch from Gandhinagar to national capital, Delhi, bringing it, whether it was the UPI, tech-driven changes, initiatives, development, Viksit Bharat, the focus again on infrastructure, just like in Gujarat. Clearly someone who has seen mass support from public repeatedly has also seen his share of criticism, whether from opponents or even on global platforms. But each time, at least when it comes to elections, people have entrusted him the responsibility to take Bharat ahead. Here's a special report about 25 years of public service of a man who critics say has polarized politics and whose supporters say is a mass leader for India like never before.
1: 7th October 2001. Narendra Damodar Das Modi, at the age of 51 years, stepped into the role of Chief Minister of Gujarat. A devastating earthquake in Bhuj had debilitating impact on the state. The next decade, little by little, he rebuilt Gujarat in his four terms as its chief minister. That was the beginning of the 2.5 decade of dedication in public life in nation building. Narendra Modi built a reputation for administrative efficiency and infrastructure development through his various initiatives from the very first day he was in office. The vibrant Gujarat he dreamt and spoke of started to take shape. It showcased and transformed the state into a major industrial and investment hub, securing Modi consecutive electoral mandates in 2002, 2007 and 2012. His enormous success created a successful Gujarat model of development. It built the cornerstone for his national debut as the leader of the nation. In May 2014, Narendra Modi transitioned to the national stage after heading the Bharatiya Janata Party to a landmark parliamentary majority.
2: Narendra Damodar Das Modi, main sangh ke प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा.
1: As Prime Minister, over the next 12 years, his administration has driven sweeping social, digital and economic reforms. Key national initiatives, including the expansion of digital public infrastructure like UPI, large-scale rural housing, direct benefit transfers, and national highway networks, have reshaped the country's socio-economic landscape. On the global stage, he became the leader others can turn to as a dost, as a Vishwaguru. Narendra Modi's foreign policy elevated India's stature, highlighted by the presidency of the G20 and leadership among emerging economies in the global south. Domestically, his tenure saw major policy shifts, including the implementation of the goods and services tax and an emphasis on domestic manufacturing through the Make in India campaign. Modi! Supporters credit Modi with creating a decisive governance model focused on last mile delivery and national security, while critics point to persistent issues regarding socio-political polarization and economic inequality. Yet, he remains the leader revered and followed both at home and abroad. The simple man with a humble beginning, Narendra Modi has reached a milestone of uninterrupted 25 years as an elected head of government, emanating his legacy as one of the most dominant political figures in India's post-independence history.
0: Remember that these are repeated tenures of a leader like we haven't seen, and in a manner in which, from Chief Minister to Prime Minister, successfully showing that people can give him that responsibility. But the next few years, as Prime Minister Modi himself saying, will be very crucial for our country, whether for economy or in the times of conflict. And as he signed off saying, we will do it.
3: Swagat hai bhai, swagat hai. स्वागत है भाई स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत
0: वेलकम बैक टू आवर स्पेशल रिपोर्ट 25 इयर्स अगो 2001 7th अक्टूबर गुजरात गेट्स अ न्यू चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एट अ टाइम व्हेन द स्टेट वाज ग्रैपलिंग विद द भुज अर्थक्वेक The next three tenures successfully won and people electing him repeatedly, where the Gujarat model of governance was about investment, innovation and ideas. But then he decided to switch from Gandhinagar to national capital, Delhi, bringing it, whether it was the UPI, tech-driven changes, initiatives, development, Viksit Bharat, the focus again on infrastructure, just like in Gujarat. Clearly someone who has seen mass support from public repeatedly has also seen his share of criticism, whether from opponents or even on global platforms. But each time, at least when it comes to elections, people have entrusted him the responsibility to take Bharat ahead. Here's a special report about 25 years of public service of a man who critics say has polarized politics and whose supporters say is a mass leader for India like never before.
4: साथियों, आज का ये दिन सिर्फ यादों के लिए नहीं है, ये अपने संकल्पों को नई ऊर्जा से भरने का दिन है. ये दिन उस वादे को दोहराने का दिन है, उस इरादे को व्यक्त करने का दिन है जो कहता है हम करके रहेंगे हम वी विल डू इट वी विल डू इट वी विल डू इट साथियों लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात की थी भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो जोश जो जज्बा चाहिए वो एक ही संदेश देता है हम करके रहेंगे हम वी विल डू इट वी विल डू इट वी विल डू इट विकसित भारत विकसित भारत बाय 2047 वी विल डू इट विकसित भारत बाय 2047। मेरे साथ बोलिए, टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक्स का आयोजन, अंतरिक्ष में कदम। साथियों, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये अद्भुत है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया। साथियों, आज मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में कोई घटना व्यर्थ नहीं गई, हर घटना ने मुझे सिखाया। मोरबी की बाढ़ ने मुझे दिन रात सेवा कार्यों में जुटने का रास्ता सिखाया, मुझे सेवा करने का भाव। भूज के भूकंप ने मुझे पुनर्निर्माण के लिए डटे रहना सिखाया। चंद्रयान ने मुझे असफलता से उठना सिखाया। कोरोना महामारी ने मुझे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का महत्व समझाया। मीडिया ने मुझे खट्टे मीठे अनुभवों के बीच आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जीवन के हर प्रवास ने मुझे नीतियों में संवेदना का रास्ता दिखाया। हर गांव, हर गरीब ने मुझे सिखाया कि साधन संसाधन भले ही सीमित हो लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। और हौसले बुलंद होने चाहिए। Thank you.
5: साथियों, सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। हमारे देश की एक बड़ी त्रासदी रही है, राजनीति के लिए समाज को वोटों के हिसाब से बांट दिया गया। आप सोचिए, खेत में पानी नहीं आता तो किसको नुकसान होता है? क्या एक जाति के किसान ही इससे प्रभावित होते हैं? बिजली नहीं आती तो क्या सिर्फ एक समुदाय के घर में अंधेरा रहता है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: Remember that these are repeated tenures of a leader like we haven't seen, and in a manner in which, from Chief Minister to Prime Minister, successfully showing that people can give him that responsibility. But the next few years, as Prime Minister Modi himself saying, will be very crucial for our country, whether for economy or in the times of conflict. And as he signed off saying, we will do it. Thank you for watching. Stay tuned to India Today.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा, उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है। दोस्तों, आज का भारत की पहचान है करना है, करना ही है और समय पर करना है।
1: यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती, लेकिन हम भारतीय उन शहीदों के साथ जुड़ करके विश्व को हमारे इतने बड़े बलिदान का एहसास नहीं करा पाए।
2: खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खेल का महत्व बहुत है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रुचि है तो उनको अवसर देना चाहिए।
3: इक्कीसवीं सदी में दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इतनी बात से चलने वाला नहीं है। 21वीं सदी की आवश्यकताएं अलग है, 21वीं सदी की स्थितियां अलग है। वो एक वक्त था लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आज वक्त है लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये एक बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है।

आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो केवल कृतज्ञता का भाव ही आता है। मैं कृतज्ञ हूं हर उस व्यक्ति, हर उस घटना के प्रति जिसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जिसने मुझे जिताया उसने मुझे विनम्र होना सिखाया, जिसने मुझे गिराया उसने मुझे फिर खड़ा होना सिखाया। शुभचिंतकों ने मुझे प्रोत्साहित किया और आलोचकों ने मुझे अपने भीतर झोंकना सिखाया। जिसने मेरा साथ दिया उसने मुझे विश्वास की शक्ति दिखाई, जिसने मेरा विरोध किया उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा, हर सफलता ने मेरे दायित्व बोध को विस्तार दिया और हर सिद्धि ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का साहस दिया, जज्बा दिया।

0: Saya showdown is expanding across the country. It is not Karnataka. Telangana is also witnessing a Form 7 row. The Congress has alleged an attempt to delete the names of one of its party workers and around 30 members of his family. India Today spoke to family members who recounted their ordeal.
1: BLO की तरफ से आपको बताया गया है कि फॉर्म 7 आपके नाम पर सबमिट किया गया है. दूसरे फैमिली मेंबर्स यहां पर जो आपके रिसाइड करते हैं उनका भी नाम डिलीशन के लिए डाला गया है. वजह क्या है, कैसे आपको पता चला?
2: मैं भी बूथल एजेंट हूं. मैं भी जो सबमिट करे फॉर्म 7 वो गलत है. 7 फॉर्म जिनका उन्हें ही सबमिट करना. उन्हें कौन क्या आके बीजेपी वाले BLA आके सबमिट करना क्या है वो हमें इन्फॉर्मेशन दिए BLO. आपके नाम पे कुछ फॉर्म आया सब आके चेक कर लो. तो मैं गया चेक करने के लिए. उसमें पता चला मेरा नाम है हमारे घर वालों के पूरे 30 जनों के डिलीशन के लिए लगाया.
0: द कांग्रेस एंड AIMIM एलेज दैट पीपल लिंक्ड टू बीजेपी सबमिटेड फॉर्म 7 एप्लीकेशंस अगेंस्ट जेन्युइन वोटर्स इन बल्क पर्टिकुलरली इन गोशा महल एंड मुशीराबाद. They allege that this was an attempt to remove genuine voters, particularly Muslims, from the electoral rolls during the SIR process. Two parties say that in Gosha Mahal, the submitted forms were not even signed by the applicants, making them ineligible for consideration.
3: ये पूरे 31 forms हैं जो एक ही family के नाम पर पूरे printed forms हैं. ये forms को पूरे लगाकर हमने CEO साहब को बताया. इसके ऊपर हमने मांग लगाई है कि इमीडिएटली ये सबके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए. ये फॉर्म कहां से आए, कहां से प्रिंट होकर आए हैं, ये प्रीफिल्ड यानी जो बीजेपी वाले हर बूथ से इतने लोगों को निकालना है, बिल्कुल जो टारगेट करके उन लोगों के पास लिस्ट कहां से आया जिसको निकालना चाह रहे हैं.

0: जो सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CSU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

कुछ समय पहले तकरीबन 300 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज आए थे और हम चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो जो कॉलीग्स हैं उनसे मिलना चाहते थे। यहाँ पे पुलिस ने हमें रोका। हम देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम देश की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों 300 एमपी को यहाँ पे रोका गया और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ बैठा रखे हैं। 50 गज दूर इलेक्शन कमीशन है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को ठीक से चलाने का है। 300 एमपी ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैं और ज्ञानेश कुमार जी डरे हुए हैं, तो पता नहीं देश में क्या हो रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी एवरीथिंग देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Saya showdown is expanding across the country. It is not Karnataka. Telangana is also witnessing a Form 7 row. The Congress has alleged an attempt to delete the names of one of its party workers and around 30 members of his family. India Today spoke to family members who recounted their ordeal.
1: BLO की तरफ से आपको बताया गया है कि फॉर्म 7 आपके नाम पर सबमिट किया गया है. दूसरे फैमिली मेंबर्स यहां पर जो आपके रेसाइड करते हैं उनका भी नाम डिलीशन के लिए डाला गया है. वजह क्या है, कैसे आपको पता चला?
2: मैं भी भूतल एजेंट हूं. मैं भी जो सबमिट करे फॉर्म 7 वो गलत है. 7 फॉर्म जिनका उन्होंने सबमिट करना, उन्होंने कौन क्या आके बीजेपी वाले BLA आके सबमिट करना क्या है वो हमें इन्फॉर्मेशन दिए. BLO आपके नाम पे कुछ फॉर्म आया सब आके चेक कर लो. तो मैं गया चेक करने के लिए, उसमें पता चला मेरा नाम है. हमारे घर वालों के पूरे 30 दिनों के डिलीशन के लिए लगाया.
0: The Congress and AIMIM alleged that people linked to BJP submitted Form 7 applications against genuine voters in bulk, particularly in Gosha Mahal and Mushirabad. They alleged that this was an attempt to remove genuine voters, particularly Muslims, from the electoral rolls during the SIR process. Two parties say that in Gosha Mahal, the submitted forms were not even signed by the applicants, making them ineligible for consideration.
3: ये पूरे 31 फॉर्म्स है जो एक ही फैमिली के नाम पर पूरे प्रिंटेड फॉर्म्स है. ये फॉर्म्स को पूरे लगाकर हमने CEO साहब को बताया. इसके ऊपर हमने मांग लगाई है कि इमीडिएटली ये सबके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए. ये फॉर्म कहाँ से आए, कहाँ से प्रिंट होकर आए हैं, ये प्रीफिल्ड यानी जो BJP वाले हर बूथ से इतने लोगों को निकालना है, बोलकर जो टारगेट करके उन लोगों के पास लिस्ट कहाँ से आया जिसको निकालना चाह रहे हैं.

0: साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा, उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है। दोस्तों, आज का भारत की पहचान है करना है, करना ही है और समय पर करना है।
1: यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती, लेकिन हम भारतीय उन शहीदों के साथ जुड़ करके विश्व को हमारे इतने बड़े बलिदान का एहसास नहीं करा पाए।
2: खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खेल का महत्व बहुत है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रुचि है तो उनको अवसर देना चाहिए।
3: सदी में दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इतनी बात से चलने वाला नहीं है। 21वीं सदी की आवश्यकताएं अलग है, 21वीं सदी की स्थितियां अलग है। वो एक वक्त था लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आज वक्त है लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये एक बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है।

0: One is Bollywood's eternal king. The other is the ultimate Bebo. And together, they could be bringing their old school magic back.
1: याद नहीं, अच्छे लोग थे।
0: शाहरुख खान्स मच अवेटेड एक्शन एंटरटेनर किंग इज रिपोर्टेडली सेट टू फीचर अ स्पेशल अपीयरेंस बाय करीना कपूर खान। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द एक्ट्रेस इज सेट टू बी रीयूनाइटिंग विद एसआरके फॉर अ स्पेशल सॉन्ग टाइटल्ड डैडी कूल, व्हिच इज रिपोर्टेडली बीइंग प्लान्ड एज वन ऑफ द फिल्म्स मेजर हाइलाइट्स। However, the development has not been officially confirmed by the makers. Interestingly, if the reports turn out to be true, Kareena and Shah Rukh will once again share the screen after their memorable collaborations in films including Ashoka,

0: Meanwhile, reports suggest that Kareena is expected to shoot the track with Shah Rukh Khan in South Africa. The team is reportedly planning an approximately 5-day schedule later this month, with the song set to feature the superstar in a completely different avatar alongside Kareena. However, Daddy Cool is not only surprised, reportedly being lined up for fans.
1: Yaad nahi, acche log the ya bure.
0: King also marks Shah Rukh Khan's first on-screen collaboration with his daughter Suhana Khan.
1: Ye unki aakhri saans hai.
0: The film boasts an ensemble cast featuring Deepika Padukone, Abhishek Bachchan, Anil Kapoor, Rani Mukherjee, Arshad Warsi, Abhay Verma and Raghav Jual in pivotal roles. Directed by Siddharth Anand, the high-octane action thriller is set to release on December 24. With Alice Entertainment Bureau, India Today.
2: Vijay Salgaonkar is back, and this time, the stakes are higher than ever. Ajay Devgn returns as the iconic character in the much-awaited concluding chapter of the Drishyam franchise. Packed with suspense, twists, and familiar faces, the film has opened to a strong response from audiences. So has Vijay Salgaonkar finally met his match? Here's a closer look at the film's box office journey.
3: ने हर किसी को ये कहानी अपने नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। तभी तो ये कहानी में वो गलत होके भी हीरो है और हम सही होके भी विलेन।
0: Vijay Salgaonkar is back, and this time the box office is witnessing a mystery of its own. Drishyam 3, the conclusion, has crossed 300 crore mark worldwide.
4: अब ये खेल बन चुका है, जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी.
0: And the film is rewriting its own box office record with every passing day.
5: तो आपके हिसाब से इस बार क्या करेगा विजय?
6: विजय क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? ये या तो विजय जानता है, या अल्लाह जानता है.
7: उनके पास strong evidence है.
0: The film has also crossed a 200 crore domestic net milestone in just 5 days. But the biggest twist came even earlier. The film struck gold at the domestic box office, crossing the 100 crore mark within just 2 days of its theatrical release.
8: अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा.
9: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्डवर्किंग क्रिमिनल है. सरकार तुझे इनाम देना चाहती है. देख तुझे मिलने कौन आया है? एसपी क्राइम ब्रांच.
10: मैं आदमी नहीं, निशानी हूं. जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसको खराब टाइम शुरू.
0: अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द फिल्म हैज कलेक्टेड 62 करोड़ नेट इन इंडिया ऑन इट्स ओपनिंग डे, फॉलोड बाय 53.50 करोड़ ऑन डे टू.
11: मन से तो झूठ बोल लेता है, पर दिल सब सच बता देता है.
10: क्या मैं एसपी क्राइम ब्रांच हूं?
11: हाँ, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल. तेरे साथ ट्राई करते हैं. क्या तूने बॉडी सेवियो से ली थी?
0: Starring Ajay Devgn in the lead, the latest installment marks the concluding chapter of the Hindi Drishyam franchise.
12: हार्ट अटैक लो हो जाए.
13: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है. खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है.
14: One kiss, one family, one person.
0: The actor reprises his much-loved role as Vijay Salgaonkar alongside Jaideep Alawat, Tabu, Shreya Saran, Ishita Datta, Mrunal Jadhav and Prakash Raj in pivotal roles.
13: जब तक कोई उसकी फैमिली को धमकी ना दे, वरना घसीटना तो दूर की बात. तुम सोच भी नहीं सकते कि वो साधारण आदमी क्या से क्या बन सकता है. फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, किसी भी वर्दी में खड़ा हो।
0: Interestingly, the Hindi film arrived in theaters a few months after Mohanlal's Malayalam language Drishyam 3, the original film in the franchise, which took a different narrative route.
7: നമ്മുടെ പ്രസക്തി മീഡിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലൂടെ ജീവൻ വെച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ട എന്തോരം കേസുകളുണ്ട് സർ.
15: അവരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സൂചന തരാൻ പറ്റുമോ?
16: I want his full file on my desk as soon as possible.
0: Hindi Drishyam franchise began in 2015 with Nishikant Kamath's directorial, which emerged as a major success and established Vijay Salgaonkar as one of Hindi cinema's memorable characters. The film's popularity paved the way for Drishyam 2, which arrived in 2022 under the direction of Abhishek Pathak, following Kamath's death.
6: Hero अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस कभी न कभी उस लाश को जरूर ढूंढ लेगी और इसीलिए उसने उसी दिन से अपनी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया था।
0: With a powerful ensemble, familiar faces and a gripping narrative, Drishyam 3: The Conclusion has made a strong start.
17: Your Honor, ये पूरा केस मनगढ़ंत जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से,
0: bringing Vijay Salgaonkar's much anticipated story to its final chapter.

0: एंटरटेनमेंट ब्यूरो इंडिया टुडे।
1: विजय का ना टाइम अच्छा चल रहा है, नहीं तो अपने थिएटर में नहीं हमारे जेल में बैठा।
2: लव स्टोरी दैट नेवर रीच्ड द बिग स्क्रीन मे फाइनली गेट इट्स सेकंड एक्ट। नियरली 7 years आफ्टर इंशाला वाज शेल्व्ड, संजय लीला भंसाली कुड बी रेडी टू रीओपन द चैप्टर विद आलिया भट्ट वंस अगेन एट द सेंटर ऑफ हिज विजन। But this time, expect a fresh script, a new spin, and most intriguingly, a hero whose identity remains a mystery. Take a look at this report by my colleague Alice.